रेडियो अमन, कभी नरम कभी गरम, म्यूजिक मस्ती और खूबसूरत पैगाम। हम लेके आएंगे मोहब्बत के एहसास का खूबसूरत अंदाज। रेडियो अमन, आपके मन का अमन।

0: चाहतों के रंग अमन के संग अमन रेडियो 88.4 नेटवर्क
1: अमन रेडियो 88.4 योर स्टेशन
2: It's 8 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jean Rang Aman.

ओके जी अस्सलाम वालेकुम मेरा अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू मी दरबारे चटोल बरातरो जुल खुशाले ठीक ठाक सुखाले देशवन मजूर पखंदुन की बे आदि सर सुकुम जमंगा वासुरी चरत चरत मोरी कम कम से की मोरी कम इलाका की मोरी और टूल मुशरानु कुशरानु डीर जात शुक्रिया और डीर जात मनना चिता सूरी देशना कॉस्मेटिक पाकिस्तान प्रोग्राम ओके जी टोल नमक की टोल दसहर मुपखेर यानी गुड मॉर्निंग सुबह पखेर इसी के साथ साथ उम्मीद करता हूँ कि सब लोग ठीक ठाक खैरियत से होंगे जहाँ जहाँ भी हमारी आवाज सुनाई देती है सबको प्रोग्राम में हर किले खुश आमदीदी कहते हैं। हमारी जितनी भी उर्दू लिस्नर हैं, उर्दू सुनने वाले हैं, उसे भी यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी आया करें। जिस तरह प्रोग्राम की शुरुआत में आप लोगों ने हमें प्यार दिया था, आप लोग प्रोग्राम में आते थे तो इसी तरह आया करें। हमारी इंतजार होती है कि हमारी हर भाई हर बहन जितनी भी खामोश लिस्नर हैं, उसका भी बहुत बहुत बहुत ज्यादा शुक्रिया।

तो बिल्कुल जी, हमारे रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारी जितनी भी खामोश लिस्नर है और खासकर हमारी बिटाबाद हजारा हरिपुर या इसके साथ साथ आटक नौखार निजामपुर सवाबी के शांगला के जितनी भी लिस्नर हैं, खासकर जितनी भी उर्दू लिस्नर हैं, उर्दू सुनने वाले हैं, तो आप लोग भी आया कर यार इस ऑस्मेटिक पाकिस्तान ये आप लोगों के लिए, आपकी खूबसूरती के लिए ये प्रोग्राम हमने लाया है। इस प्रोग्राम का आगाज हमने रेडियो दबंग पर सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए किया था, तो फिर हमें भी आप लोगों की तरफ से प्यार चाहिए कि आप हमें प्यार दे दें और हम आपको प्यार के बदले एक खूबसूरत मायारी और रिजल्ट से भरा हुआ प्रोडक्ट दे दें। बिल्कुल जी, संगे चिता सुलमा हुए जी हाजकर जमुंग दो सवाबई सुमरहुम सिमी दी जमुंग दो अटक दी जमुंग चिकम दे आवाज आ चुंकि निजामपुर नौखा टोपई अगधुन जधुन हाजी शाह हेसरो खेराबाद शिवेड़ा गुवाहाटी चारबाग चर्द चर्द हम जमुंग आवाज दी अनु बिल्कुल जिता सुराशी मुक्सर बरखा वाकली जिक जिता इजना कॉस्मेटिक पाकिस्तान प्रोग्राम दामुंग शुरुआत पर रेडियो दबंग बाने ओम तासुल पार खड़े दे अनु ची शुरुआत तासुल पार शुवे दे बिया तासुल लाजिमी पकार दा चिता का मीना मुंगल राखी आउ जमुंग द मीनी पर बदल के मुंगल हम मीना राखी और तीसरे से लेकर टांग आने वाला चिकम ने डेरा डेरा डेरा डेरा डेरा डेरा ज्यादा शुक्रिया डेरे से आता मनना थैंक यू सो मच। और ब्याज दवाने वाला जमुंग द प्रोडक्ट लकम अमीन वर्की का ना ओए होए होए होए होए आओ द टांग वाला चूंकि जगचिए अब दूसरे जमुंग टाइम डेर ज्यादा शो टाइम डेर ज्यादा शो इंशाल्लाह अदगा शान टाइम बचकम दे द रेडियो दबंग दलारे चिकम दे हम उशी ब्याब इंशाल्लाह स्टाफ सुम दे प्रोडक्ट सरमीने चिकम दे कना दुमर सेवा भी दुमर सेवा भी चिबिया बयानवल बे मुश्किल चिबिया तीसरे जमुंग आवाज रेडियो दबंग दलारी अकप डिस्ट्रिक्ट मर्दान के याचिकम दे मलकन डिवीजन आप दीर के दिरुजानो के तासु जमुंग आवाज हो रही कना अनुजान लक्षण रावी के खा आओ के ने लगे तासी खूबु न खुन के चितासु

0: हुआ है जो आया हूँ ना।
1: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा तो वापस जाओगे आप?
0: जी बस जाऊंगा, छुट्टी खत्म है, 2 माह की छुट्टी थी बस, इंशाल्लाह ये जुलाई के महीने के बाद इंशाल्लाह फिर जाऊंगा।
1: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा, अल्लाह आपको खैर बखैरियत वापस जाए, अल्लाह आपको कामयाब करे, कामयाबी के साथ आप वापस आए अपने प्यारों के लिए, अल्लाह आपको खुश रखे। तो चलो मैं आपसे एक बात पूछ लेता हूँ कि शाकिर आपने कभी हमारी सना कॉस्मेटिक का इंतजाम किया है कि नहीं?
0: नहीं सर जी, ये तकरीबन तीसरा दिन है आप लोगों का प्रोग्राम सुन रहा हूँ, बल्कि आपका सुन रहा हूँ ना।
1: ठीक है जी।
0: तो सर जी मेरा जो चेहरा है ना, इस पर छोटे छोटे दाने और थोड़ा सांवलापन है ना।
1: ठीक है जी।
0: तो मैंने कहा कोई अच्छी सी क्रीम बता दें आप। और दूसरा मसला सर जी ये है कि मेरे बाल बहुत गिरते हैं।
1: आप मुझे ये बताएं शाकिर, आपकी उम्र कितनी होगी?
0: तकरीबन सर जी मेरी 25-26 एज है तकरीबन।
1: अच्छा, फिर आप इस तरह कर लेना शाकिर के आप जो है ना, हमारी इज़ना कॉस्मेटिक पाकिस्तान की जो 4-in-1 सॉरी फार्मूला ब्यूटी क्रीम नहीं है, फार्मूला
0: जी जी,
1: उसका आप लोग इंतहाब कर ले। ठीक है, आप टांग में रहते हो ना? हाँ, टांग में हो?
0: जी जी जी, टांग सिटी में सर।
1: अच्छा, टांग सिटी में। तो फिर आप इस तरह कर लेना शाकिर कि आप मंसूर जनरल स्टोर दुकान नंबर 4-5 है, सदाम मार्केट में हमारे डिस्ट्रीब्यूटर है हाजी जरबत खान, शायद आप जानती भी होंगे उसे।
0: जी जी, उसकी जाप देखी है मैंने सर जी।
1: अच्छा जी, फिर उनके पास जाए और हाजी जरबत खान से उसे बोले कि बस हमें एक इज़ना फार्मूला ब्यूटी क्रीम दे दो, एक बालों गिरने के लिए शैम्पू और तेल दे दे, वो आपको खुद एक अच्छी सी प्रोडक्ट हमारी दे देगा।
0: अच्छा ठीक है सर जी, इंशाल्लाह।
1: ठीक है इंशाल्लाह,
0: बस आज ही जाता हूँ इंशाल्लाह, आज ले आता हूँ। सर जी मेरे बाल बहुत ज्यादा गिरते हैं, जैसे कंघी वगैरह करता हूँ ना।
1: हाँ,
0: इतने ज्यादा गिरते हैं बाल।
1: तो इंशाल्लाह आप इस तरह कर लेना, हमारी ओनियन यानी प्याज वाला या हर्बल वाला, इसी दोनों में, इस दो शैम्पू में आपको एक भी शैम्पू मिल जाए ना तो बेहतरीन है। और अगर ऑनियन का ऑयल मिल गया या आलमंड का ऑयल यानी तेल मिल गया तो और भी बेहतरीन है। ठीक है जी। ओके जी, अगर शाकिर आप हमारी बात सुन रहे हैं तो आप इस तरह कर ले कि आप जाए और वहां से

बिल्कुल जी, स्टार्ट द टूल इन वड़की प्रोडक्ट ना ओके ये निजमंग ब्लीच द टूल इन अरजान दी 60-70 रुपए के बिल्कुल जी तास्त मिला वीगी अगयो से कोर था तो रिजल्ट इधर को तासु ति मुतमाइन शोली उदनोर प्रोडक्ट इंतहाब ओके के रिजल्ट इधर ना को नुमदा कशपीता या रुपए बहुमा तासु तो वापस मिला वीगी जक इज ना कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान सासु द स्किन सरसरा सासु द ब्यूटी ख्याल हम साथी सासु शिकम दे ख्याल खुम साथी और दख सर विबिल खुशी तजुर्बो से न दे मंग पता सुबह तजुर्बे न कहूँ जिता सुबह से मंग प्रोडक्ट इस्तेमाल हुई तसलब नुकसान दर कही ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ऑलरेडी मंग तजुर्बा कड़ी दा अगर मंग पखपल इस्तेमाल कड़ी दी और बिल्कुल जी मंग तजुर्बा कामयाब शविदा पता सुबह मंग तजुर्बे न कहूँ खरोरा।

0: You are listening to Radio Aman Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.
2: चाहतों के रंग अमन के संग अमन रेडियो 88.4 नेटवर्क।
3: दिल से जो निकलती है दिलों तक जो जाती है मालूमात को जगाती है दुनिया का हाल बताती है। ये वो आवाज है जो आपके शहर में आपको अपनों से मिलाती है। ये आवाज है जो अमन की है। ये वो पैगाम है जो अमन है। रेडियो अमन 88.4 अमन का पैगाम।

रेडियो अमन, कभी नरम कभी गरम। म्यूजिक, मस्ती और खूबसूरत पैगाम हम लेके आएंगे, मोहब्बत के एहसास का खूबसूरत अंदाज। रेडियो अमन, आपके मन का अमन।

0: Back to the present with Radio Aman 88.4 Dark.
1: लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें।

0: ताज़ा तरीन अपलोड की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें।
1: Back to back music with Radio Bahman 88.4.

0: ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें।
1: Back to the music with Radio Aman 88.4.

0: आपका अपना रेडियो रेडियो में 88.4 नेट पर।
1: दिल से जो निकलती है, दिलों तक जो जाती है, मालूमात को जगाती है, दुनिया का हाल बताती है। ये वो आवाज है जो आपके शहर में आपको अपनों से मिलाती है। ये आवाज है जो अमन की है। ये वो पैगाम है जो अमन है। रेडियो अमन 88.4 अमन का पैगाम।

0: आपका अपना रेडियो रेडियो में 88.4 नेटवर्क।
1: Welcome to Radio Aman 88.4.
2: It's 6 o'clock.
1: Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.

0: इसमें अमूमन पुरानी दर्दें चोटें जाहिर होती हैं,
1: जाहिर होती हैं।
0: तो एक तो ये करा करें कि रात को एक कप नीम गर्म दूध
1: जी
0: और उसमें हाफ टी स्पून चाय का जो आधा चमचा है
1: जी जी
0: वो हल्दी मिला के पी लिया करें।
1: हल्दी जी जी
0: घरेलू जो हम डालते हैं सालनों में
1: जी
0: वो हल्दी मिला के पी लिया करें ताकि एक तो इनके असाब जो हैं
1: जी
0: वो बेहतर हों और जो टिश्यू ब्रेक हुए हैं या तो वो भी बेहतर होंगे और दूसरा ये है कि ब्लड सर्कुलेशन ठीक होगी, उससे ये है कि काफी हद तक बेहतरी आएगी। और दूसरा ये है कि वैसे तो बाजू का टोटके नुस्खे काम नहीं करते हैं डॉक्टर साहब, मरीज को देखा जाता है उसकी कंडीशन, उसका मर्ज देखा जाता है
1: जी जी।
0: ये होता है फर्स्ट एड के ऊपर कि आप ये वक्ती तौर पे रिलीफ ले लें
1: जी जी।
0: और अगर उस तरह भी आप चंद दिन ऐसा भी करके देख सकते हैं कि बेलाडूना प्लास्टर आता है वो छेदों वाला जो चिप सुराखों वाला
1: जी जी जी
0: वो पूरी शीट लें
1: जी जी
0: और वो इस पूरे कंधे को कवर करें ठीक है ना
1: जी।
0: उससे ये होगा कि एक तो वो इसको जरा टाइट करेगा
1: हाँ जी
0: और दूसरा ये है कि वहां से दर्द को ये चुनेगा
1: खींचता है
0: तो उससे ये है कि बड़ा इनको रिलीफ मिलेगा
1: जी जी।
0: और अगर इन्हें कभी इधर आना हो
1: जी जी
0: शवाल मार्केट की तरफ
1: हाँ जी हाँ जी
0: तो आके मुझसे जरा मिल लें मशवरा कर लें
1: जी।
0: हो सकता है मैं इन्हें इनकी उम्र और उसके इनका मर्ज डिस्कस करके क्योंकि फोन पे इतना लंबा हो नहीं सकता कालें बीच में होती हैं तो फिर ये है कि इनको मैं कोई बेहतर मशवरा या बेहतर इलाज इनके लिए तजवीज कर सकता हूँ
1: जी जी जी बिल्कुल। कम उम्र और अगर शहबाज ना काल कड़ा बिल्कुल तासो दे हकीम सेब ता डेर तफसीलन जवाब दकड़ा उम्मीद दासोबा दे हकीम सेब कम तरीका वो शवला कम तरीके बने ताउस्ता दरोशोल चिदास तरीके बने बतासो को नो इंशाल्लाह तासो दर्द चिकम तासो दे ओजे दर्द अगे चि खुदा पाक कमीरावली अल्लाह पाक पर शिफात नसीब की अगे दर्द न बतासो निजात असिल को बेह हम हकीम से वही के तासो रतला सो न बिल्कुल शवाल मार्केट तरासो अल शिफा दवा तासो बाकायदा चेकअप को मोहिना बहु को न बिल्कुल अगे नबाद बदवाद तजवीज को इंशाल्लाह खुदा पाक पर शिफात नसीब की यो बल कलर गुरु चिमु सदकाल पली के बल कलर चौक तजी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी उरोर छो खबर है कहो जी हो दकम जी
2: ना
1: अच्छा गाँव कला दा शबाज खेल ना तासु लकी मरवत ना कल कड़ा दा उरोर ता ता प्रोग्राम कर कला है वाई जी शयो जी सियात मुशदा बिल्कुल दार जी
2: मसाला
1: जी जी
2: सर तुमसे कसान जख्म
1: ठीक था जी। आप उर्दू बने वो पाए जो इंशाल्लाह उर्दू से
2: बाकी जी
1: बेजलम्बर पवे इनसे इनशाला वर्षाओं से चौक ये नसीली कल है अगो तो पवे इनसे बन जलम्बर इनशाला वर्षाओं से और
2: जी जी
1: बस ठीक था इनशाला जो प्रोग्राम रसरा लम्बर बाबा दर वर्षा दा किम से बताओ सो जवाब दर कीजिए सही दा ओके अस्सलाम वालेकुम जी हकीम साहब ये हमारे एक भाई हैं लकी मरवत से इन्होंने कॉल की है। ये साहब कह रहे हैं कि हमारे घर में हमारे जो बच्चे हैं तीन चार पांच बच्चे हैं और बेगम और मुझे तो इन सब को मैदे के गैस का वो है प्रॉब्लम है
0: ठीक है
1: जिसकी वजह से उन सब का जो है ना एक ही मसला है और इनका जो मैदा है वो गैस करता है और उसमें दर्द भी होता है
0: ठीक हो
1: तो ये सब कह रहे हैं कि हकीम साहब ऐसा कोई या हमें नुस्खा बता दें या अगर हमें बुलाते हैं टांक में तो हम टांक भी आ सकते हैं
0: ठीक है
1: मुआयना चेकअप के लिए।

ओके सी यार मती उलास पर अगले दिन शेयर करें नडीन वनन जी मती उलास बेस राधी मुझे नोटेंशन कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान तमाम प्रोडक्ट्स मिलावे की सी डीर मनना खुशाल शी यार दिन लो अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम भाई आज तो जबरदस्त मौसम है ठंडी हवा है और भाई आज तो अपनी आवाज में टपी प्ले कर वशम में भाई जब आपका शो का टाइम होता है तो सिग्नल काम नहीं करते हैं बहुत गुस्सा आती है भाई टपी प्ले करो ना प्लीज रुबाब रुबाब जमाखुरी जमा टपी इधर तपली का ऊपर लेश वेट होगा हंस 11 बजे बजे ब्रेक अख लगा ना ऊपर टपी इधर तपली का भी बारा शमा सलाम भाई सरेंगे शय ए शय तो सरेंगे शय खुरी सारा मिसू फैमिली शॉपिंग सेंटर से मिला विच डियर मनस अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम वेलकम टू द नोटिफिकेशन ब्यूटीफुल शो सब सिस्टर को सलाम वालेकुम सलाम शाजिया पूरी सरंगी शायद जुड़ है सिद रहमान भाई डियर मनस खुशाल शी द एसएमएस को डियर मनस जिगर शहबाज ने अब्दुल हदी खुदा जवान लरे जुदा की जनन जुल्म पर जनन जुल्म पढ़ीर के जनन जने पढ़ीर के जुल्म डियर मनस अल्लाह दे खैर को और दिन लवाजी अस्सलाम वालेकुम भाई जान हाउ आर यू आई एम फाइन बच्ची शुद्ध मौसम की तरह नाइस है और नो टेंशन कॉस्मेटिक बगजान जिंदाबाद सबसे को सलाम वालेकुम सलाम मिराल बिठनी दिन वन समाखुर खुशाल शी बनेला थैंक्स अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम भाई चरंगी शी शी मजी नो टेंशन गुड क्रीम बल्कि सिर अवड़ी दी بلکې سره وړي لمانه خې سکړه موخه دې سم نو بازما خوري نو زه ټولو ته وایم چې نو ټینشن یې سم لوي نو ټینشن سره مينو کې سي نو ټینشن رواخلې سي اور چې کوم ټینشن له تاسو له بخښ لا دې کې بیا خې سونو دې کې ویشا